श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृश सारथिना त्वयैव यौदर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ।

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यो मातुस्तनाविव शिशोरमृताय मानौ प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये।

विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948। आज बुधवार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी अर्थात 7 ऑक्टोबर 2026।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

आजकल बड़े दुख की बात है कि अंतरे का विस्तार भूलते जा रहे हैं लोग। बहुत से लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए कि अंतरे की जरूरत क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद मालूम नहीं है कि सिर्फ शर्ट पहन के निकल जाए तो क्या हालत होगा। संचारी आभोग तो जा चुका है, अंतरे को भी भूलने पे लगे हुए हैं। लेकिन अंतरे की उपज वही गाएगा, वही बजा सकता है जिसको तालीम हो। अस्थाई सब लोग बरत सकते हैं, अंतरा बरतना बहुत मुश्किल है।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत।
1: बहुत साचे।

श्री वेंकटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थायतः सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेंकटेश चरणौ।

चरणौ शरणम् प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्पर तुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये।

विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948। आज बुधवार भाद्रपद कृष्ण द्वादशी अर्थात 7 ऑक्टोबर 2026।

आजकल बड़े दुख की बात है कि अंतरे का विस्तार भूलते जा रहे हैं लोग। बहुत से लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए कि अंतरे की जरूरत क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद मालूम नहीं है कि सिर्फ शर्ट पहन के निकल जाएं तो क्या हालत होगा। संचारी आभोग तो जा चुका है, अंतरे को भी भूलने पे लगे हुए हैं, लेकिन अंतरे की उपज वही गाएगा, वही बजा सकता है जिसको तालीम हो। अस्थाई सब लोग बरत सकते हैं, अंतरा बरतना बहुत मुश्किल है।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत।
1: बहुत साचे।